कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

फिर फसाने तेरे मेरे नाम के दिल गया जान गई गए हम काम से भी गए हम काम से तूने खिलाई ऐसी नजरों की जान से।

तेरे मंजिल की, वो तेरे मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की बात है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं, आरज़ू मैं छुपाए, तड़पती हूँ मैं, आरज़ू मैं छुपाए, छुपा कर नसीब।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाए।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, ना पैसे का लफड़ा जहाँ। ये तो दुनिया है व्यापार की, इसमें अपना ठिकाना कहाँ। बचताना ना

0: बधाई है, माता राम जन्म की बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है।
1: भर भर के कनक थाल, भर भर के

0: अब थोड़ा सा मुस्कुराओ रे
1: मुरे पालुआ गाड़ी तेज चलाओ रे चलाओ चलाओ चलाओ रे काहे दिया घबराओ रे मोरा काहे दिया घबराओ रे रुक जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे ओ मुरे पालुआ
0: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

0: जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे ओ मुझे बाल माँ अब न सताओ रे
1: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

क्या तुम आज किसी के हो जाओगे मुर्दान माँ अब न सताओगे आओगे आओगे आओगे मुर्दान माँ अब न सताओगे।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा बरस जा ए पवन।

मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था घटा परत जा।

मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मे